यह आकाशवाणी एडिलेड ऑस्ट्रेलिया है। हम 103.1 एफएम पर बोल रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड 5ebi.com.au आज आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ, डीके कुलश्रेष्ठा। चलिए सुनते हैं एक भारतीय वाद्य संगीत।

लीजिए अब प्रस्तुत है शिव स्तुति जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रचित। गायक हैं सुदेश पाठक।

भक्ति भावना से भरपूर अब प्रस्तुत है एक राम भजन। गायिका हैं डॉक्टर श्वेता मदापडी।

0: अब लीजिए प्रस्तुत है एक विवेक वार्ता तुलसीदास बादशाह अकबर रहीम और एक गरीब महिला के संबंध में।
1: तुलसी और रहीम एक दूसरे के समकालिक थे और एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। तो हुआ ये कि तुलसीदास जी के पास एक औरत आती है अपनी बेटी की शादी की सहायता मांगने। तुलसीदास बोले, मैं तो कुटिया में रहने वाला ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो धन है नहीं कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। सच में तुलसीदास जीवन भर गरीब रहे। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं जानती हूं कि आपके पास देने को पैसे नहीं हैं, लेकिन यदि आप अनुशंसा कर देंगे तो आपके द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर, मैंने पैरवी के आधार पर, रहीम हमको सहायता देंगे। रहीम कौन थे? आप जानते हैं कि रहीम एक महान कवि थे, लेकिन साथ ही साथ रहीम अकबर के मानस पुत्र थे और अवध के इलाके के गवर्नर थे, सूबेदार थे, और तुलसीदास की बड़ी इज्जत करते थे। तो रहीम के नाम की अनुशंसा कर दिया तुलसी जी ने। फिर वो औरत जाती है, औरत ने मांग किया धन की, रहीम ने पैसे दे दिए। तुलसीदास के पास में आकर महिला धन्यवाद देती है कि आपके कारण मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। तो तुलसीदास पूछते हैं कि ठीक है, पैसा तो वो दे ही दिए होंगे, आप मुझे बताओ कि उनका व्यवहार कैसा था। तो महिला ने बताया कि जब वो हमको दान दे रहे थे, दान देने के लिए जब बात उनका ऊपर उठा तो उनकी आंखें झुकी हुई थी। तब तुलसीदास ने एक पत्र लिखा रहीम को कि ऐसी नेकी दान की कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करे त्यों त्यों नीचे नैन। दान की इतनी अच्छी शैली कहां से सीखे हो भाई कि जब दान देने के लिए हाथ ऊपर करते हो तो आंखें झुक जाती है। तो फिर रहीम ने जवाब दिया कि आप तो गोस्वामी तुलसीदास हैं, आप क्या नहीं जानते हैं, लेकिन आपका आदेश हुआ है तो मैं जवाब दे देता हूं। और जवाब यह है कि मैं इस बात को समझता हूं कि देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, देने वाला कोई और है जो दिन रात भेजता रहता है मेरे माध्यम से। देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोको करे ताही नीची नैन। लोगों को मेरे नाम का भ्रम हो जाता है, इसलिए आंखें नीची हो जाती है मेरी। तो कुल मिलाकर देखो तो तुलसीदास और रहीम एक दूसरे के समकालिक है।
0: अब लुत्फ लीजिए शायरी की शहजादी हिमांशी बापरा की एक बड़ी खूबसूरत गजल है।
2: हिमांशी, ये देखिए क्या बात है। अरे वाह वाह वाह वाह।
3: मैंने बिछड़ के चुन लिया तन्हाइयों का साथ।
2: वाह।
3: मैंने बिछड़ के चुन लिया तन्हाइयों का साथ, कैसे तुम्हारा गैर का होने का दिल हुआ।
2: क्या बात।
3: आएगा जिंदगी खा गई है अंदर से।
2: जिंदगी खा गई है अंदर से।
3: जिंदगी खा गई है अंदर से, कैसे चेहरे पे नूर आएगा।
2: क्या बात है।
3: इश्क एक बार हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं।
2: इश्क एक बार हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं।
3: इश्क एक बार हो ऐसी तो कोई शर्त नहीं, पहला नाकाम हो तो इश्क दोबारा।
2: क्या कहने, वाह वाह।
3: लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते।
2: क्या बात है भाई, क्या मिश्रा है, वाह वाह वाह वाह।
3: लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। है ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है।
2: क्या बात है।
3: ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है, जो बुरे वक्त में औकात दिखा
2: देते। क्या बात है, वाह।
3: अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली।
2: क्या बात है।
3: मैंने तरकीब निकाली है भुलाने वाली।
2: क्या बात है।
3: अली मैंने ठुकराई थी दुनिया तेरी खातिर प्यारे।
2: मैंने ठुकराई थी दुनिया तेरी खातिर प्यारे,
3: अब तो दुनिया भी नहीं साथ निभाने वाली।
2: क्या बात।
3: साथ निभाने वाली उसकी मर्जी है, मेरे साथ रहे या ना रहे।
2: क्या बात है।
3: उसकी मर्जी है मेरे साथ रहे या ना रहे, मैंने हर बात बता दी ना बताने वाली।
2: क्या बात है।
3: हम तेरे शहर में आए तो खफा मत होना।
2: क्या बात है।
3: हम तेरे शहर में आए तो खफा मत होना, तेरी चौखट पे ना आएंगे, चले जाए।
2: हिमांशी ये देखिए,
0: अब प्रस्तुत हैं विभिन्न संस्कृतियों के टकराव के बारे में सुरेश मुतरेजा के कुछ विचार।
4: भारत में रहने वाले माता पिता की सोच में इतना अंतर क्यों? राम राम जी दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे शायद लाखों माता पिता महसूस करते हैं। यह विषय है विदेश में रहने वाले बच्चों और भारत में रहने वाले माता पिता की सोच का अंतर। दोस्तों यह अंतर प्यार का नहीं होता, यह अंतर परिस्थितियों का होता है। भारत में रहने वाले माता पिता सोचते हैं कि बेटा रोज फोन कर ले, त्योहार पर घर आ जाए, दो दिन हमारे साथ बैठ जाए, क्योंकि उनके लिए रिश्तों का मतलब है समय देना। लेकिन विदेश में रहने वाले बच्चों की दुनिया अलग होती है। वहां नौकरी का दबाव, लंबे काम के घंटे, घर की जिम्मेवारियां, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की भागदौड़ उन्हें हर समय व्यस्त रखती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके दिल में अपने माता पिता के लिए प्यार कम हो गया है। कई बार वे रात को भी थककर यह सोचते हैं कि काश आज मम्मी पापा से थोड़ी देर बात कर पाता। दोस्तों गलती अक्सर किसी की भी नहीं होती, बस उम्मीदें और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे समय दें और बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उन्हें समझें और दोनों एक दूसरे की मजबूरी समझ लें, तो आधी दूरियां वहीं खत्म हो जाएंगी। मैं माता पिता से कहना चाहूंगा अपने बच्चों से प्यार कीजिए, लेकिन उनकी व्यस्तता को भी समझें। अपनी जिंदगी को सिर्फ उनके फोन के इंतजार तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्त बनाइए, घूमिए, हंसिए और अपने शौक पूरे कीजिए। और मैं बच्चों से भी यही कहना चाहूंगा कि आपके माता पिता को रोज घंटों नहीं सिर्फ कुछ मिनट का अपनापन चाहिए। एक छोटा सा वीडियो कॉल, एक प्यार भरा संदेश, या यह पूछ लेना कि मम्मी पापा आप कैसे हो। यकीन मानिए दोस्तों, यही शब्द उनके चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। दोस्तों रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, रिश्ते तब कमजोर पड़ते हैं जब उनका संवाद कम हो जाता है। और इसीलिए समय कम हो सकता है लेकिन प्यार कभी कम मत होने दीजिए। अगर आपके बच्चे विदेश में रहते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, भगवान उन्हें स्वस्थ और खुश रखे। और अगर आप विदेश में रहते हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अपने माता पिता को एक फोन जरूर कीजिए, हो सकता है कि वो उसी फोन का इंतजार कर रहे हो। राम राम जी।
0: अब प्रस्तुत है एक रोचक जानकारी अपने चारों ओर वायुमंडल के बारे में।
5: हमें धरती के कितने किलोमीटर ऊंचे तक जाना होगा, या कहें कि अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? जिस तरह धरती के अंदर मुख्य और उप मिलाकर 5 परतें पाई जाती हैं, उसी तरह धरती के ऊपर भी परतें होती हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। हालांकि धरती के ऊपर की परतें मुख्य रूप से ठोस या तरल न होकर धूल और गैसों से बनी होती है। इन परतों का नाम कुछ इस प्रकार है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इनके नाम आपको भले ही अटपटे लगे, लेकिन इनका काम सुनकर आपको बेहद खुशी होगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो हम और आप जिंदा हैं। धरती से लेकर ऊपर 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल कहते हैं। मेट्रोपोज का मतलब है बदलाव, और सच कहें तो यहाँ बदलाव ही बदलाव है। मौसम बदलता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, तूफान उठते हैं, और कभी कभी इंद्रधनुष भी यहीं से झांकता है। यही वह परत है जहाँ बादल तैरते हैं और बारिश बरसती है। हवाओं की दिशा और स्पीड यही तय होती है, जिससे कभी तूफान आता है तो कभी ठंडी हवा। शुरुआत के 2 से 3 किलोमीटर तक आपको हवा सामान्य लगेगी, लेकिन ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन कम होने लगेगी, जिससे आपकी सांसें भारी होंगी और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ज्यादा देर रहना मुश्किल हो जाएगा। इस परत के 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही सामान्यतया हवाई जहाज उड़ते हैं। यहाँ इतनी ठंड और प्रेशर की कमी होती है कि इंसान को अगर बिना किसी उपकरण के छोड़ दिया जाए तो वह सीधा बेहोश हो जाएगा। धरती की 90% गैसें जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह इसी परत में कैद हैं। अगर ट्रोपोस्फियर नहीं होता तो धरती पर मौसम नहीं होता, न बारिश, न बादल, न तूफान जैसे बुध, और हमारे चांद के पास कोई ट्रोपोस्फियर परत नहीं है, इसीलिए तो वहां न बारिश होती है न ही कोई ऑक्सीजन होता है। अब अगली परत के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल है। यह परत 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। जैसे ही आप इसमें कदम रखते हैं, आपको एहसास होगा कि यहाँ का माहौल धरती से कितना अलग है। जहाँ ट्रोपोस्फियर में तूफान, बारिश और बिजली कड़कती है, वहीं स्ट्रेटोस्फियर में आकर सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ मौसम का कोई खेल नहीं होता, मतलब अगर आप यहाँ खड़े हैं तो नीचे के तूफानों को बस दूर से देखते रहेंगे। इस परत में हमारी ओजोन लेयर मौजूद है, जो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अगर यह ओजोन परत न होती तो धरती पर जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाता। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप इंसानों की सुरक्षा करने वाली एक जादुई ढाल के सामने खड़े हैं। कई बड़े जेट विमान और सुपरसोनिक प्लेन इस परत में भी उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हवा बहुत स्थिर है और मौसम की गड़बड़ी भी नहीं होती है, जिससे उड़ान स्मूथ रहती है। जहाँ ट्रोपोस्फियर में आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान गिरता है, तो वहीं स्ट्रेटोस्फियर में नियम बदल जाता है। यहाँ ऊपर जाते जाते तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि ओजोन लेयर सूर्य की ऊर्जा को सोख कर गर्मी पैदा करती है। अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के यहाँ पहुंच जाए तो सांस लेना असंभव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। इसके साथ ही तेज यू विकिरणें आपकी त्वचा और आंखों को जला सकती हैं। लेकिन एक बात पक्की है, यहाँ खड़े होकर आप धरती का नजारा पहले से कहीं ज्यादा साफ और अद्भुत देखेंगे। नीला आसमान हल्का हल्का काला पड़ने लगेगा और आपको महसूस होगा कि आप धीरे धीरे अंतरिक्ष के करीब पहुंच रहे हैं। अगली तीसरी परत जो आगे आएगी वह मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल होगी, जो 50 किलोमीटर ऊपर से लेकर 85 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। यही वह परत है जहां धरती को बचाने वाला फायर शील्ड मौजूद है, मतलब अगर कोई रॉकेट या स्पेसशिप यहां से गुजरता है तो वह धरती की वायुमंडलीय ढाल के सबसे खतरनाक हिस्सों में से होकर निकलता है। तभी तो वह जलने जैसा दिखता है। जब कोई उल्कापिंड आसमान से गिरता है तो वह इसी परत में घर्षण के कारण जलकर राख बन जाता है। जो टूटते तारे आप रात में देखते हैं, वो असल में इसी परत में जलते हुए उल्कापिंड होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ का तापमान अचानक -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, मतलब यह धरती का सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना नामुमकिन है और शरीर तुरंत ठंड से जमने लगेगा। बिना स्पेस सूट के यहाँ कुछ सेकंड भी जिंदा रहना असंभव है। लेकिन अगर आप स्पेस सूट पहनकर यहाँ खड़े हैं तो आप हर सेकंड आकाश में जलते हुए उल्का पिंडों का लाइव शो देख सकते हैं। एक बात शायद आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि जब यहाँ इतनी ठंड है तो फिर उल्कापिंड जलते कैसे हैं? दोस्तों, जब उल्कापिंड या स्पेसशिप तेज रफ्तार से मेसोस्फीयर में घुसते हैं तो वे हवा के अणुओं से बहुत जोर से टकराते हैं। यह टकराहट इतनी तेज होती है कि इनमें घर्षण पैदा हो जाता है। यही घर्षण चीजों को जलाता है, ना कि मेसोस्फीयर की ठंडक या गर्मी, जैसे आप अपने हाथ को गर्म करने के लिए ठंड में रगड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और भी ऊपर जाने पर चौथी परत मिलती है, जिसका नाम थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल है। यह परत 85 किलोमीटर से लेकर धरती के 600 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। थर्मोस्फीयर वह जगह है जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं। यहां गर्मी है लेकिन महसूस नहीं होती, यहां रोशनी है लेकिन अंधेरा भी है, और यहीं से शुरू होता है इंसान का असली अंतरिक्ष सफर, वैज्ञानिकों ने धरती और अंतरिक्ष की सीमा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानी। इसे कार्मन लाइन कहते हैं, मतलब 100 किलोमीटर ऊपर पहुंचने पर आप अंतरिक्ष में पहला कदम रखते हैं। यही वह जगह है जहां सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर आसमान में हरे, नीले और लाल रंग की रोशनी पैदा करते हैं, जिन्हें हम ऑरोरा कहते हैं। यह नजारा ऐसा लगता है जैसे आसमान में जादू हो रहा हो। आपके फोन का GPS टीवी के चैनल, मौसम की जानकारी, यह सब काम इसी लेयर में घूमते हुए सैटेलाइट की वजह से होता है। इतना ही नहीं, इंसानों का घर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी परत में घूम रहा है। इस स्पेस स्टेशन की स्पीड लगभग 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तभी तो इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट 24 घंटे में करीब 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। यहीं से रेडियो सिग्नल धरती पर वापस बाउंस होकर आते हैं। इसी वजह से पहले के जमाने में बिना इंटरनेट भी दूर दराज के लोग रेडियो सुन पाते थे। पांचवी और आखिरी परत का नाम एक्सोस्फियर यानी बाहरी मंडल है। यह परत धरती के 600 किलोमीटर ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। यह हमारे वायुमंडल का बॉर्डर एरिया है जहां अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसे आप धरती और ब्रह्मांड के बीच का गेट मान सकते हैं। यहां हवा इतनी पतली और इतनी कम होती है कि इसे लगभग खाली अंतरिक्ष कह सकते हैं, क्योंकि हवा के कण इतने दूर दूर होते हैं कि अगर एक कण मुंबई में है तो दूसरा कण दिल्ली में मिलेगा। ऑक्सीजन तो होता ही नहीं। एक्सोस्फियर में कई सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं जो टीवी सिग्नल, GPS और इंटरनेट जैसी चीजें हम तक पहुंचाते हैं। यहाँ बिना स्पेस सूट के कुछ सेकंड से ज्यादा जिंदा रहना असंभव है, लेकिन यहाँ से धरती का नजारा सबसे अद्भुत होगा। नीचे पूरी धरती नीले और सफेद बादलों के साथ गोल दिखाई देगी और ऊपर अनंत काला ब्रह्मांड चमकते तारों से भरा हुआ होगा। आपको लगेगा कि वायुमंडल एक्सोस्फियर पर खत्म हो गया, लेकिन नहीं, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन गैस की बहुत पतली परत फैली होती है जिसे जियोकोरोना कहते हैं। हालांकि इन्हें धरती के वायुमंडल की परतों में नहीं जोड़ा जाता है। खास बात यह है कि सूर्य की रोशनी इस हाइड्रोजन से टकराकर हल्की सी चमक पैदा करती है जिससे धरती में एक ग्लो जैसा माहौल दिखता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप चांद पर खड़े हों और सही उपकरण से देखें तो धरती एक हल्की नीली ग्लो से घिरी दिखेगी। इसके बाद मैग्नेटोस्फीयर आता है जो धरती से 1000 किलोमीटर से ही स्टार्ट हो जाता है और ऊपर लाखों किलोमीटर तक जाता है। ये वह अदृश्य ढाल है जो धरती के अंदर जो कोर है उससे निकलने वाले लोहे के चुंबकीय क्षेत्र से बनता है, जो सूर्य के सामने धरती से 60,000 किलोमीटर ऊपर तक होता है। लेकिन सूर्य के विपरीत दिशा यानी धरती के पीछे यह फील्ड कई लाख किलोमीटर तक पूंछ की तरह फैली होती है। अगर मैग्नेटोस्फीयर न होता तो सूर्य हमारी धरती को पल भर में अपने सौर तूफान से जलाकर खाक कर देता। धरती और सूर्य की दूरी की बात की जाए तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर निकल कर आती है, यानी धरती के 100 किलोमीटर ऊपर से करोड़ों किलोमीटर में अंतरिक्ष ही फैला हुआ है। हालांकि इससे भी आगे अंतरिक्ष है जो अनंत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वैसे काफी दूरी तक फैला हुआ है, लेकिन 15 लाख किलोमीटर तक की दूरी में जो भी उपग्रह और वस्तु होती है वह उसे अपनी ओर खींच लेती है। 15 लाख किलोमीटर के बाद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इन्हीं 15 लाख किलोमीटर के बीच में एक जगह ऐसा भी है जहां ना तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और ना ही सूर्य का। अगर इस जगह किसी चीज को ले जाकर रख दिया जाए तो वह न तो आगे बढ़ेगी और न ही हिलेगी। इसीलिए तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा ने 15 लाख किलोमीटर की इसी दूरी पर रखा हुआ है ताकि हमें ब्रह्मांड की अच्छी।
0: अब प्रस्तुत है मनशा जी से युगों के वर्णन के बारे में एक ज्ञानवर्धक वार्ता।
6: हम सब ने चार अलग अलग युगों का नाम सुन रखा है, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और हमारा कलयुग। हर युग में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में वास करते थे, यानी कि दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। जैसे भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते थे और हिरण्यकश्यप पाताल लोक में रहता था। समय है, बदलता रहता है, वो सुना है ना, मैं समय हूँ और मैं निरंतर बदलता रहता हूँ। तो समय बदलता रहता है। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में जो देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे, अब वो एक ही लोक में वास करने लगे। जैसे भगवान श्री राम और रावण, दोनों का सेम सेम जगह पर रहना। जगह में दूरी हो सकती है लेकिन लोक एक हो गया। फिर समय का पहिया चलने लगा और उस त्रेता युग का अंत हो गया। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में अब ये जो देवता और दानव थे एक ही लोक से एक ही घर में आकर रहने लगे। जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन, दोनों तरह के प्राणी हमको एक घर में नजर आने लगे, देवता भी और दानव भी। फिर समय है, बदलेगा ही, रुक नहीं सकता। और उस युग के अंत के साथ ही नया युग शुरू हुआ जो है कलयुग, जिसमें हम सब रहते हैं। दोनों अलग अलग लोकों से देवता दानव एक लोक में आए, एक लोक से देवता दानव एक घर में आए, और अब एक घर से देवता और दानव हम लोगों के शरीर में आए। आज हर शरीर में देवता और दानव दोनों वास करते हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने कौन से रूप को उजागर करते हैं। जो आपको दरिया दिल मिलते हैं, अच्छा बोलने वाले मिलते हैं, जो भला करते हैं, दान करते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, उनका उनके ऊपर देवता रूप हावी होता है। और जो निर्दयी होते हैं, कट्टर होते हैं, जो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अभिमानी होते हैं, मारकाट करते हैं, उनका दानव रूप भारी होता है। तो आप सोच लीजिए कि हम कहां से चले थे और आज कहां आ गए हैं, ये अंतर है।
0: अब डॉक्टर अनु सपन से एक बड़ी खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कविता सुनिए।

0: बंद है गीत का, सिंबल देखना, प्रतीक देखना। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी।
1: मैं कुहासे में लिपटी हुई

0: कहते यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन नारी की स्थिति क्या हुई शैलेश
1: जी?
0: एक और उसकी पूजा की गई और एक और उसको वस्तु समझा गया। तब मैं पंक्तियाँ पढ़कर सुनिएगा गीत का अंतिम चरण। देवियों की तरह

0: अगले गाने के साथ ही हमारा आज का यह रंगारंग प्रोग्राम समाप्त होता है। अब आपसे डी के कुलश्रेष्ठ विदा चाहते हैं। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
1: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।